पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिया साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया खात पड़िया जेते बरस बरस पड़िया जेते मां

सैनिक को सुनते आया। इन जनता के वास के सुनाई तुवे की जय तो पाया। एक नानू तू मिले कप तुत खोया गुर कृपा ते जानी आज था तुदा बुझाया सहज ही सच समाया।

0: मिछा खाई अंतर पूजा पर संजय दुर्गा पाई छोड़ी ले पखंडा नाम लिया जाए तरंदा महला पहला मानस खाने करे निवाज छुरी बगाए तीन गताग तीन कर ब्राह्मण पूरे ना दोना पिया साज कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हाव शरण दुर्ग डेरा दूर नाव निक कूड़िया परपुर मत्था टिका तेर धोती तो खाई हक फिर जगत कसाई नील वस पैर हुए प्रमाण मिली स्थान पूजा प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर सुन जाना
1: देख चौका कटे कार ऊपर आए बैठे कुड़े यार मत फिटे वे।

साखी है जित जमर जा पंडोही पंडु पुजै भंडे बाज ना कोई नानक पंडे बारे कुछ।

तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दी जय नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक

फरीदा गलिए चकड़ा दूर कर नाल प्यारे निहो चलां ता भिजे कंबली रहा ता टुटे निहो जो सुजो कंबली अल्लाह वर्षा में हो।

सबदुरतेवड हंस है सच नाम उरतार सच संग्रह सदा सच रहे सच नाम प्यार सदा निर्मल मैल न लग नदर कीती करतार नानक हों तिन कै बलिहार नै

तो कर्म कारण समर्थ है, तू कर है सुथिया, तू अन मंगिया दान देवना, सब नाह जिया, सब आखो सतगुरु।

टूट गई सब तार, जंत बिचारा क्या करे, चले बजावन हार। दर दरवाजे जाए था, क्यों डिठो कड़ियाल। ओ निदोसा मारी है,

0: कणे सहन गे दुख जिन्ना खाधी चौपड़ी कणे सहन गे दुख बेसुमारे अथा अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले जुगो जुग अटल दीन अर दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझे रहवर सांझी वालता दे उपदेशक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तिना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालेओ जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोजाना संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो ओ चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए विचारां दी आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैण और आप सरबत संगत असीस बख्शो कोई रसना वांझी ना रहे दोवें हाथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करदे आं लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहत सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनामा पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।
1: वड हंस की वार महला चौथा लला बहलीमा की तुन गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला तीजा।

माने सुख रलियां जेड़ियां सुख रलियां मान दियां ने असी रीसां उन्हां दियां कर रहे हैं। जिमें कहे गुरमुख जन नूं वेख के मनमुख दे मन च चा पैदा हो जाए, जे लोग इनू सत्कार सकते तो मैनू क्यों नहीं। वो सत्कार लभण तुर पिया, कम नहीं छड़े, कम उही करी, कम जेड़े पहलों करता सी उही करी जांदा। जे गुरमुख नू वेख के गुरमुख दी रीस करनी ही है, फिर हौली हौली अपने कम भी तो छड़ ना, ताई गुरमुख बनेगा। कम तू उही रखी छड़े ते रीस उन्हां दी करन लग जाए भी मैं भाई हुण गुरमुख जन बन जाने, ते मालक कहिंदे फिर आही कुछ होना, डुब मुए बग बपुड़े सिर तल पर पाऊं। जिवें कां कोयल नूं वेख के आखे भी लै जे इहदी जबान इन्नी मिठी है, रंग ते मेरा भी इहदे वर्गा ही है, आपां भी अज तो बाद च इदां ही कूकिया करना है। उन्हूं भी चा चढ़ गया। हुण कोयल बोलदी है बड़ा मिठा बोलदी, जदों ओ बोलदी इंज लगदा भी हुण बोली जाए, ते अहीं उन्हूं प्यार नाल बैठे बस सुनदे रहिए उहदी आवाज। ओ कां ने उन्हूं बोलदिआं वेख लिया भी इह बड़ा सुकून देंदी, बड़े सारे लोग आनंद नाल बैठे। ओह भी कहिंदा भी अज तो मगरों आपां भी जदों इह बोलिआ करूं आपां भी उदों ही बोलांगे। ओह ठीक है। हुण कोयल बोली, कां भी कोले ही बह गया, कहिंदा भी चल तू एक बारी तू कूकी एक बारी मैं। वो कोयल कूकदी है, कां अपनी कां कां ते आ गया। हुण कां कोयल हरगी आवाज कित्थों कढ लवे जी, रीसां करें ते नाड़ियां, हंसां देख तरंदे आ। कोयल कूकदी वेख के कां कां कां ते आ गया। हुण जदों कोयल बोलदी सी सुनन वाला बड़े आनंद च, ते जदों कां बोलन लग्या उन्हें वटा चुकिया ते कां दे मारिया, कहिंदा इन्नू उड़ाओ पहला भी, ते कोयल वाला रस भी मरी जांदा है। नतीजा ते यही निकलना ना जी, ए नहीं भी कल्ला स्वरूप एक होवे ते इखलाक भी उदां दा होएगा, ये जरूरी नहीं है। भाई गुरदास जी ने उदाहरणां दित्तियां ना, जैसे चूनो खांड स्वैत एक शह दिखाई देत, जिवें चूना ते खांड दोवें इक्को जे दिसदे ने, पर उन्हां दा स्वाद उदों पता लगदा जदों उन्हां नूं जुबान ते रखीए, आटा केड़ा है ते खंड केड़ी है, फिर पता लगदा। पित्तल और सोना वेखण नूं इक्को जिहा, पर सुनियारा दसदा पित्तल केड़ा है ते सोना केड़ा है। कां ते कोयल इक्को जिहे, उन्हां दी जुबान दसदी है कां केड़ा है ते कोयल केड़ी है। गुरमुख ते मनमुख वेखण नूं दोवें इक्को जिहे, पर दोवां दा इखलाक दसदा है गुरमुख केड़ा ते मनमुख केड़ा है। हंस ते बगला एक वेखण नूं इक्को जिहे, पर दोवां दा भोजन दसदा हंस केड़ा ते बगला केड़ा है। हंसां देख तरंदियां बग्गा पे आया चाओ, डुब मुए बग बपुड़े सिर तल उपर पाओ। इंदे भाई जे रीस करन दा चाह है ते फिर रीस उस ढंग नाल कर जेड़ी रीस तेरा जीवन बन सके, इखलाक बन जाए। बगले तो हंस बनन दा चाह है ते मालक कहिंदे फिर भाव, हुण भाव की है, मनमुख तो गुरमुख बनन दा चाह है ते चेता रख गुरु शब्द दे नाल अपना आपा सवारिया कर, क्योंकि सतगुरु ओ सरोवर है जेड़ा कागों हंस करन दी समर्था रखदा।

फिर अगलियां पंक्तियां च तू आपे आप निरंकार है, मालका तू आप ही आप है, आप ही निरंकार है तू, को अवर ना बिया, दूजा कोई होर नहीं, तू करण कारण समर्थ है, मालका तू आप ही करण अते कारण दे समर्थ है, तू कर है सोथिया, जो तू करदा है ओ वर्तदा ओ हुंदा है, फिर तू अन मंगिया दान देवना सब नाहां जीआं, मालका सारिया जीवां दियां झोलियां तू बिना मंगिया भरदा।

मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारु करे तेरा कार्य सब सवारना सब नगला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सब किस वैसते सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसेया वाजे शब्द कन्हेरे कह नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वाई बसे आज ने संसद पुजाइया सदा कुर्बान किया गुरु विष्णु दियां वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द रूप आरो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच सब तित कर सुपागे कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारी पंच दो

दुख रोग संता पुत्र सुनी सच्ची बानी संत साजन पय सरस पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पुनित सत गुर रहया पर पूरे दिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम, वाहिगुरु साहिब जीओ, फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेस, गुण ही परेया मैं फिरा,

कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। दंडोत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ।

अमृत छाड बिख बिखखाही माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जमत्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई।

नूर अरसों कुरसों चटी तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पातशाह सिर शाह दैशाहो जिस पास बैठे आ सो ही है सबना दावे साहो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ सूही महला तीजा जोग चारे तन जे पवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निचल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम जोग चारे तन जे पवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निचल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर न कोई राम तिस बिन अवर न कोई सदा सच सोई

देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान परोसा दान दान अवसर दान नाम दान। श्री अमृतसर जिया दे दर्शन स्नान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मनी वा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे अंगुर धामा दे जिन्हां तो खालसा

दोहरा गया भैया काल की सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने जो प्रभु को

सगला खयमासु इदेन नमतसु हो तेरे देखन कियास। बनके लोयन दंतर साला सोहना नक जिन लमड़े वाला खूब तेरी पगेरी मिठे तेरे बोल द्वारका नगरी कहे के मगोल हले जारा हले जारा खुश खबरी निकी तेरी बेगारी हले तेरा नाम शोक टल ग्रेवीन एहन सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सजन सच्चा पात साहु सिरसा देसा हो

श्री वाहे गुरु साहेब जी सूही महला तीजा जुग चारे तन जे पढ़े दिन सतगुर सुहाग न होई राम नहीं चल राज सदा हर के राम।

है, बिन सतगुरु सुहाग न होई राम, नेह चल राज सदा हर केरा, तिस बिन अवर न कोई राम, तिस बिन अवर न कोई सदा सच सोई, गुरमुख को जानिया।

हर का रंग रती है कामना, मिल प्रीतम सुख पाए राम, मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए, सच वरत सब थाई।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਧ ਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਕ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜੈਨਾ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੀ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ
जन नानक बल बल सद बल जइए तेरा अंत ना पारा ब्रिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जइए तेरा अंत ना पारा ब्रिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओ ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावहे सब त्यावहे तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पे खारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी तेन टूटी जम की फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करें हर पूजा जी तब तापहे जपहे बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडयावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहे सो होई तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुदे आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सत्यार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू दहे सोई ओ पाई रहो सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नौ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदया बिछोड़या आ मिलाया तू दरिया सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेर बिजोग मिल विछुड़या संजोगी मेर जिसनों तू जाना है सोई जन जाने
हर गुण सद ही आक वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद में दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़े पाईले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबियले, मान एक न चेत समूण मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म भया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जेह तू ना ही विसरया। आसा महला पंजवां, भई प्राप्त मानख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भाज केवल नाम। श्रृंजाम लाग भवजुल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कोहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कोहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी क्रोहा देर छा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवय तुम काबो हो, आभाद मुहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवय करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबैरन को आय संक्रिये, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाट कोई अवर ना ध्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख मारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये, आभाद मुझे उवरिये, भरन काल का त्रास निवरिये, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रच्छा, राख लियो मोहे राखण हारे, साहेब सन सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू धियो, जमन काल सवलोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा,
सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजने आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कट कट गए अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के बड़ बड़ की जन्ने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तव देह अपारा, जब आकर्ख करत हूं कब हूं, तुम मैं मिलत देह धर सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद संभ, ताका मूड़े उचारत पिता, जाको पीव ना पावत बिदा, ताको कृपाहण अनुमानत, महामूड कछ पीद न जानत, महादेव को कैत सदा शिव, रंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंड जे रहसे तजकीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमट पयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, अजुगा स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आस तुझे तब शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुख तुहाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को इक बार ते है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तान जहे न हरिओ, ताकि ताप तनक मै हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट शाह शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे ओबारा, जिन नर नाम तेहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओबारी, सरठो मोह सहाई, दुष्ट दोख दे ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दय ले हो ओबारी, सर्वठोर मोह सहाय, दुष्ट दोखते
लेहो बचाई सवैया पाए गहे जावते तुम्हारे तबते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्य सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहे हम एक ना जाने सिरियस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे बखने दोहरा सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल दोहार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार रामकली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार प्रिया शब्द गावन आईया शब्दो तंगावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला सुमृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किसे है जिस दे सो पावई सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द गने रे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जेना भुखा सब गवाइया करशा सुख मन है बसया जेना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो पे आरो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होआ तित कर उन्ना हद वाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे
पूरे गोरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते बुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदामणी महला पंजवां थल विच तिन वस्तु पइयो सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पंचाय तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरे आ

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं।

तेरा तिस बिन अवर न कोई राम, जुग चारे तन जे पवे बिन सतगुर सोहाग ना होई राम। निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर न कोई राम, तिस बिन अवर न कोई सदा सच सोई, गुरमुख इको जानिया तन पिर मिलावा होआ, गुरमति मन मन्या सतगुर मिलया तार पाया, बिन हर नामे मुक्त न होई। नानक कमन कंते रावे मन मन सुख होई, सतगुर सेव तन बल्लड़िये हर वर पावे सोई राम। सदा होए सोहगणी फिर मेला वेस न होई राम, फिर मेला वेस न होई गुरमुख बुझे कोई, हमे मार पछाणिया करनी कार कमावे शब्द समावे अंतर इको जानिया, गुरमुख प्रभ रावे दिन राति अपना सच्ची शोभा होई। नानक कमन फिर रावे अपना रब रहा प्रभ सोई, गुर की कार करे तन बल्लड़िये हर वर दे मिलाए राम। हर के रंग रती है कमन मिल प्रीतम सुख पाए राम, मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए, सच वरते सब थाई सच्चा सिंगार करे दिन राति कमन सच समाए। हर सुख दाता शब्द पछाता

जाने गुरमति हर पाए सातन बाली तर मिली मेरे प्रभु आप मेराई राम गुरमति कट चंदन होआ प्रभ रब रहा सब थाई राम प्रभ रब रहा सब थाई मन बसाई

प्रभ पाणी सचे सिंगार बनाया कमन निर्मल हमे मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते नाम नवे निद पाई कमन निर्मल हमे मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते नाम नवे निद पाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सोजन प्रभु तुम्हें मिलासी धन धन ते धन जन जह कृपाल हर हर भयो हर गुर नानक।

नारायण संग शोभ कहत माज शोध जिसे दही पात खाहे जियो देख रूप अतनोप मोह महा मग पही किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईसबम ज्ञान ध्यान तत हिये चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख

गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण वसरे गावे इंद्राद भगत पहरलादिग आत्म रस जिन जानेयो कब कष्ट जस गा।

0: तार अमर सतगुरु थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नैन।
1: अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो।

भगतना गाद पुयंगम महादेव गुण रव सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने ओ जप कल।

सत सत सते सत पणिए दूसर आ न अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेहे रसन चाख्यो तेहे

सच्चे ब्राह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आका सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तदाक है लाख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्ची।